आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरज बराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। इस वीकेंड पर डाउनटाउन रैली में 17th अफ्रीकन अमेरिकन कल्चरल फेस्टिवल जो है वो आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हजारों लोगों ने जुटने की जो है वो रजिस्टर्ड किया है मिंटू से। तो ऐसा है कि ये इवेंट जो है ये काफ़ी मजबूत होने वाला है। अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हो, आप अगर कुछ ट्रेडिशनल चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे जाना चाहिए। एंड ऐसे फेस्टिवल है ना यार, लाइक एक कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं हर एक कंट्री का, तो वो काफ़ी ज़रूरी है देखना। हर एक कंट्री के बारे में जानना भी ज़रूरी है, बहुत कुछ सीखने के लिए है यार, बस सीखने की चाह होनी चाहिए। एंजॉय करते हैं, अगला गाना सुनते रहिएगा रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड अब वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा सेगमेंट का, बॉलीवुड की गलियारों से मतलब मुंबई माया नगरी से मैं खबरें आपके कानों तक पहुंचाता हूं। तो पहली खबर तो बहुत अच्छी है कि मिर्ज़ापुर द मूवी का बड़ा धमाका। जी हाँ, बहुत एक्साइटमेंट इस मूवी को लेकर चल रही थी। तो खबर क्या है कि आज मेकर्स ने बड़ा सरप्राइज देते हुए इस फिल्म का पूरा म्यूजिक एल्बम सीधे अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए रिलीज कर दिया है। ट्रेलर लॉन्च पर टीम ने खुलासा किया कि ये फिल्म सीजन एक से छठे और सातवें एपिसोड की बीच की कहानी जो है वो दिखाई जाएगी, एंड जिससे हर कोई पुराने राजों को जो है वो जोड़ पाएगा। काफ़ी चर्चा में रह गई यार मिर्ज़ापुर, मतलब कहने का ऐसा है कि नाम ही काफ़ी है। एंजॉय करते हैं अगला गाना, सुनते रहिएगा रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, तू और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते।

मैं पागल हूँ और बहुत पागल, मैं पागल हूँ और बहुत पागल, पर ये भी बात है कि दिल सच्चा है। छीन तो लेता तुझको सरेआम में, पर मसला ये कि शौहर तेरा आदमी अच्छा है।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड कैसे आप सब लोग, कैसी चल रही है आपकी आज की शाम। देन रियल हीरो सोनू सूद जो है वो बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नेपाल पहुंचे। सोनू सूद इज़ अ रियल हीरो। बहुत बार सोनू सूद को ऐसे सोशल एक्टिविटी, अच्छे काम देखते हुए हम सब ने देखा है और आज बॉलीवुड के रियल लाइफ हीरो सोनू सूद भारी मात्रा में कंबल और राशन लेकर नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे मार्केटिंग स्टंट बता रहे हैं, जिसका सोनू ने बेहद शालीनता से जवाब दिया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सोनू सूद ने बहुत मदद की है। जो हेटर्स हैं वो हेट करते रहेंगे, लेकिन कौन आया आगे, है ना, नेपाल कौन गया? ओनली सोनू सूद, लाइक खबरों के अनुसार। बाकी तो इट्स लाइक गए हैं तो ट्रोल क्यों करना है। आप जाओ, नहीं तो आप करो कुछ, एंजॉय करते फिलहाल अगला गाना।

0: कसका है। वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। एंड अगली खबर जो है वो फिल्म पद्मावत की है। फिल्म पद्मावत रिलीज हो के बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन जो जंग है वो आज छिड़ चुकी है, पुरानी जंग है। तो खबर यह है कि जौहर सीन पर स्वरा भास्कर की पुरानी टिप्पणी पर आज विवाद फिर जो है उठ गया है। एक्टर रणवीर शौरी ने आज सोशल मीडिया पर स्वरा को खरी खोटी सुनाते हुए उनके बयान को बेहद शर्मनाक बताया गया है। वही स्वरा ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने रानी पद्मावती को कभी कायर नहीं कहा। तो थिंग इज दैट ये पुराना विवाद जो है वो छिड़ चुका है। एंड कभी कभी पुरानी चीज़ें इसलिए इनकम्प्लीट रह जाती है क्योंकि उसे आप कंप्लीट नहीं करते हो, एक बार में ही कंप्लीट करनी चाहिए। एंड ऐसे लगता है लेट्स सी ये कमिटमेंट या फिर जो भी इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट चल रही है उनका एंड कब होता है। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स।
1: हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? व्हाट हैपेंड?

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

हेलो हाय कसक आए, आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स। मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस, बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। बॉलीवुड की गलियारों से खबरें मैं लाता हूँ आपके लिए। तो अगली खबर है कि साजिद नाडियाडवाला का बड़ा ऐलान। जी हाँ, नाडियाडवाला ग्रैंडसन ने आज ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ मिलकर घोषणा की है कि उनकी अगली 3 बड़ी फिल्मों की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में ही होगी, जिसे कल्ट कॉमेडी फिल्म है जिसका नाम बेबी 2 है। बेबी 1 जो आपको पता है कितनी सुपर डुपर हिट मूवी थी, अभी बेबी 2 इसमें शामिल है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। कैसे चल रही है आपकी आज की शाम? एंड आज के शाम में अगर मैं बात करूं कि कुछ देसी ऐसा इंडियन फूड खाने का मन कर रहा है यार, आपका क्या मन हो रहा है आप मुझे बता सकते हैं। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी तो है, पक्का लोकल भी है।

लिए झूमू दीवाना बन के तेरे लिए, ओ वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए, ओ ना कभी तू जुदा। ये गाना गाने का मकसद मेरा कुछ इतना खास नहीं था, बट मकसद इतना था कि आज है विवेक ओबेरॉय जो हैंडसम बॉय कहलाते हैं बॉलीवुड के, उनका बर्थडे। तो रेडियो नायरा एंड निर्वाणा नाइट्स विश करता है विवेक ओबेरॉय को बहुत बहुत ढेर सारा हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं विवेक ओबेरॉय इनको। एंड विवेक ओबेरॉय चाहे वो माया भाई हो या चॉकलेट बॉय हो, चाहे वो विलन भी हो, हर किरदार अपना परफेक्टली निभाते हैं एंड एक एक्टर के साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। तो विश यू वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सुनते रहिएगा रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पंडित वना नाइट्स एंड कैसे हैं आप सब लोग, कैसे चल रही है आज की आपकी शाम। तो नेपाल में भयंकर बाढ़ और लैंडस्लाइड के बीच फंसे एक्ट्रेस मानसी आखिरकार आज सुरक्षित भारत लौट आई है। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते ही वो अपनी बेटी को गले लगाकर बेहद इमोशनल हो गई। उन्होंने बताया कि बॉर्डर पार करने के लिए उन्हें मीलों पैदल चलना पड़ा एंड नेपाल में जिस तरह से बाढ़ आई है सब लोगों ने आगे आकर नेपाल की मदद जो है वो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि नेचर इज़ द ओनली थिंग जिसका मुकाबला आप कभी नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूँ कि डू टेक केयर ऑफ नेचर, देन नेचर डेफिनेटली विल टेक केयर ऑफ यू। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना, सुनते रहिएगा रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड एक बहुत ही एक्साइटमेंट से भरी हुई खबर आपके लिए लेके आया हूँ। म्यूजिक लेजेंड एआर रहमान जल्द ही एक फिल्म से बतौर एक्टर का डेब्यू करने जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। एंड आज रिपोर्ट्स जो कहती है वो ये कहती है कि इस फिल्म का नाम जो है वो मूनवॉक हो सकता है और ये फिल्म इसी साल दिवाली पर नितेश तिवारी की महागाथा रामायण से सीधा आपने देखनी है। मतलब रामायण एंड मूनवॉक की टक्कर हो सकती है एक दूसरे के साथ। एंड यू नो लाइक क्या आपकी प्रतिक्रिया है? आपने कभी सोचा था? मैंने तो नहीं सोचा था कि ए आर रहमान कभी एक्टिंग के फील्ड में आएंगे, लेकिन ठीक है, कभी कभी रियलाइज भी होता है कि दे कैन डू एक्टिंग ऑल्सो। बट लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इन्जॉय करते हैं अगला एक गाना।

अब सुन रहे हैं रेडियो नारायण निर्वाणा नाइट्स, एंजॉय किया आपने गाना, गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। एंड वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच रेडियो नारायण निर्वाणा नाइट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। आप हमारे रेडियो नारा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से एंड एप्पल प्ले स्टोर से। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यू नीड टू टाइप रेडियो नारा, दैट्स इट, आपको मिल जाएंगी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मिलने के बाद आप सुन सकते हैं रेडियो नारा के एंटरटेनमेंट से एंड एनर्जी से भरपूर हमारे आर्टिस्ट के शोज, अनलिमिटेड म्यूजिक भी आप एंजॉय कर सकते हैं। एंड देश और दुनिया के किसी भी कोने से आप हमारे रेडियो नायरा के सारे प्रोग्राम्स एंड म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। शर्त बस इतनी सी है कि आपका जो नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला ये गाना, सुनते रहिएगा रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

बनाना नाइट्स एंड मैं यही कह रहा था कि अब वक्त हो चुका है कि आपके लव वंस के साथ डिनर एंजॉय करने का। 90s के की रिलेट कर पाएंगे कि जब हम 90s में थे एंड तब सारे लोग बैठकर घर में खाना खाते थे, बातचीत होती थी। अभी तो प्रैक्टिकल बहुत है चीज़ें, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आपके फैमिली के साथ आज भी बैठ के डिनर कर रहे हो तो लकी हो आप। एंड 7 से 10 का ये टाइम आपके साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मिलता हूँ कल आपको रेडियो नायरा निर्वाणा नाइट से शो पर। 7 से 10 हमारा ये शो चलता है एंड एंजॉय करते हैं अगला एक गाना डिनर के साथ साथ। अगर आप किसी के साथ ड्राइव कर रहे हो तो उनके साथ भी ये गाना आप सुन सकते हैं, मज़ा आ जाएगा। कल मिलता हूँ आपको, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर।

0: दो छोरों को पीटना की इतनी बड़ी सजा आज तक पूरे बिस्सू में किसी को ना मिली होगी।
1: काली तो उसने मने दी थी ना, तन्ने आदरवाणी की जरूरत थी है?
0: अब बता रही है

0: तू जो भी कहेगी सब कराएंगे मम्मी।
1: बस इस पहलवानी से बचा ले।
2: साढ़ भर के लिए भूल जो कि थारी कोई माँ है।
3: रे इतनी जल्दी भूल गई?
4: जो के बात कर रहा है महावीर, छोरियां और अखाड़े में इस उम्र में पाप करवावेगा के?

0: yes, yes. 써요, 이렇게.
1: Yeah. नए साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ. ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत.

जाना कभी ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है,

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के। पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

0: सबका स्वागत।
1: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सुनते रहिए रेडियो नैरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 49 एएम पक्का देसी पक्का लोकल.
1: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 carat gold and 18 carat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 919-388-3838.
2: Triangle, are you ready? For the first time in Raleigh-Durham, Radio Naira and Cherished Moments proudly present Bhajan Clubbing, a Krishna Janmashtami special where devotion meets the beat and brings generation together. Bring your family and friends for an unforgettable evening of bhajans, music, dance and celebration featuring AJ the DJ. Plus, enjoy exciting raffles to win and celebrate for a cause. A portion of the proceeds will benefit Radha Krishna Temple. Saturday, September 5th, 7 to 11 p.m. at Hooky Entertainment, Keri. Tickets on Eventbrite. For more details, call 628-258-9983. That's 628-258-9983. Or email info@radionaira.com. Bhajan Clubbing, one rhythm, one heart, one divine celebration.
3: October को क्या हुआ था? Movie देखी थी, पाव भाजी खाई थी, पंजी गए थे.
4: Wrong. 2 अक्टूबर को गरबा नाइट है. अरे भूल ही गया. आ डेट तो याद रखवानी छोए. गरबा लवर्स, are you ready? On October BG, रिदम अने रास लेने आवे छे. गरबा नाइट चनिया चोड़ी अने केडियू रेडी राखो एपेक्स मा थवानी छे फुल ऑन गरबानी धमाल. जॉइन अस फ्राइडे ऑक्टोबर 2nd एट 7 PM एट हवेली एपेक्स. डांस टू द इनक्रेडिबल बीट्स ऑफ अमृता मंके एंड निमेश नगर विद लाइव म्यूजिक डिलिशियस फूड फैमिली फ्रेंड्स एंड रात भर गरबानी मौज. अर्ली बर्ड टिकट्स ओनली अंटिल सेप्टेम्बर 7.
3: टिकट्स ऑन सुलेखा और चेक द रिदम एंड रास फ्लायर ऑन रेडियो नायरा फेसबुक इंस्टाग्राम और रेडियो नायरा .com. वन बीट वन सर्कल वन.
0: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल.

0: सदियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: Something big is about to happen at Hooky Entertainment. Feel the devotion, feel the energy. Immerse yourself in the trance of divine power.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM। पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल.
1: Something big is about to happen at Hooky Entertainment. Feel the devotion, feel the energy. Immerse yourself in the trance of divine power.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 44 1090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Not out 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 49 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में? क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना,
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM। पक्का देसी, पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: Something big is about to happen at Hooky Entertainment. Feel the devotion, feel the energy. Immerse yourself in the trance of divine power.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: Something big is about to happen at Hooky Entertainment. Feel the devotion, feel the energy. Immerse yourself in the trance of divine power.

0: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 49 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में? क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: उसका नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज अ फ्राइडे एंड फ्राइडे को क्या होता है, 5 to 7 यू एंड एवरी वन ऑफ यू एंड आई वी कनेक्ट. और आज की शाम होती है आप सबकी मेरे नाम, और नाम है ज्योति. कैसा लगा, कोई कहे कहता रहे, अपना तो अंदाज निराला है, पुराना है, अच्छा वाला है. हाउ अबाउट दैट. चलिए आज की शाम हम शुरू करेंगे. बिफोर वी स्टार्ट द इवनिंग, आई वॉन्टेड टू विश एवरी वन हैप्पी जन्माष्टमी. आई डू नॉट हैव दैट एज अ टॉपिक प्रिपेयर फॉर टुडे. आई डेफिनेटली हैव समथिंग एल्स, मोर लाइक ऑन फ्रेंडशिप. सो आज हम देखते हैं कि दोस्ती किसकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखती है, कैसे थे हमारे दोस्त फ्रॉम द स्कूल टाइम अप अंटिल नाउ. एंड वेल, कृष्णा ने भी तो यही कहा, मैं आपका दोस्त हूँ. सो वहीं से शुरू करेंगे, राइट? सो एनी वे, आई एम गोना लेट यू कंटिन्यू लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग एंड आफ्टर दैट विल कम एंड टॉक अ लिटल बिट अबाउट फ्रेंडशिप. हाउ अबाउट दैट? All right, without any further delay, let's continue listening to the next one that I have for you guys.

0: Hum Sab Diwali is bringing alive the festival of lights. And you don't want to miss it. Get ready for an unforgettable celebration of Indian culture featuring spectacular performances, delicious food, exciting shopping, family fun, and so much more. Bring your family, bring your friends, and come experience the magic of Hum Sab Diwali. And calling all musicians, composers, and creative talents. Could you create the sound of Hum Sab? Enter our exciting Hum Sab theme song composition competition and let your music become part of the Hum Sab story. For complete details about the competition and Hum Sab Diwali, visit humsab.org.
1: Aap sun rahe hain Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. Pakka desi, pakka local.
2: पक्का देसी एंड पक्का लोकल. मैं हूं आपकी दोस्त लोकली इन नॉर्थ कैरोलिना, नाम है ज्योति. और आज की ये शाम है आप सबकी मेरे नाम, और बात कर रहे हैं हम दोस्ती की. हमने शुरू किया सेम स्कूल बस, सेम बेंच, सेम एवरीथिंग. हाउ अबाउट लंच बॉक्स वाली दोस्ती? टिफिन एक्सचेंज करते थे. आई थिंक आई रिमेम्बर दैट. कोई राजमा चावल लेके आता था तो मैं उसको अपनी ब्रेड टोस्ट दे देती थी, तू ये खा ले दोस्त, तेरे लिए राजमा चावल अच्छा नहीं है पेट के लिए. होमवर्क कॉपी करना, आई रिमेम्बर दैट वन. कॉपी तो करना नहीं, लेकिन आई रिमेम्बर हिस्ट्री की क्लास में ऑल द स्टूडेंट्स यूज टू कीप स्टैंडिंग बिकॉज वो कुछ याद करके नहीं आए, चैप्टर कुछ दिया समथिंग यू नो. और हमने टेबल के नीचे वो जो छोटी सी जगह होती है वहाँ पे कॉपीज रखी थी, और उनको निकाल के वी वर लाइक फोर गर्ल्स, उनको निकाल के वी वर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड टीचर नेवर केम टू नो कि हमें कैसे आते हैं. नॉट दैट वी एवर क्रैम्ड एनी टॉपिक फ्रॉम व्हाट वाज गिवन टू अस. और सारी क्लास खड़ी है और उस सबकी रूलर से पिटाई हो रही थी, सो इतना मुझे याद है. और हम चार लड़कियां बैठी रहती थी. सेविंग सीट्स नॉट मच. टीचर्स निक नेम्स यस डेफिनेटली. और एक बारी तो म्यूजिक टीचर के सामने हिस्ट्री टीचर का निक नेम मुँह से निकल गया था, एंड देन वी ऑल लुक्ड एट ईच अदर एंड काइंड ऑफ ओह दैट वाज बैड. और मेरी अटेंडेंस लगा देना ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट आई एम श्योर आप सबका हुआ होगा. स्कूल ट्रिप्स, पनिशमेंट्स टुगेदर, समथिंग लाइक दैट. एक पनिशमेंट का इंसिडेंट था जो मैं बिल्कुल शेयर नहीं करूँगी, विच वॉज रियली एम्बैरेसिंग. एनी वे, आप मुझे कॉल करके बताना थोड़ा, यू नो, जस्ट फॉर फन के लिस्ट. सो हु वॉज योर स्कूल का बेस्ट फ्रेंड एंड आर यू गाइज स्टिल कनेक्टेड? आपके कोई एपिसोड्स, लाइक एनी थिंग यू वॉन्ट टू शेयर कि स्कूल टाइम पे क्या होता था, क्या मस्ती करते थे? मस्ती की तो पाठशाला थी उस टाइम पे, तो हाउ वॉज दैट? ऑल राइट, सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी ऑन दोस्ती विद मस्ती की पाठशाला. लेकिन अब तो हम बोलेंगे तू जब तक कहेगा मैं तब तक डांस करूँगी. गैस करो कौन सा नंबर है. आई थिंक सम ऑफ यू मे बी एबल टू, बट एनी वे, जब तलक तू बोलेगा तब तलक डांस होगा. ऑल राइट, लेट्स कंटिन्यू दैट एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्टे ट्यून्ड टू रेडियो नायरा बिकॉज आई एम ब्रिंगिंग यू अ लॉट ऑफ गुड नंबर्स हियर. 99.9 FM HD4 एंड 101.9 FM 1490 AM. डू नॉट गो एनीवेयर.

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: हेल्थी रहिए और रेडियो नायरा सुनते रहिए. दैट इज द सीक्रेट ऑफ योर हेल्थी लाइफ. डोंट फॉरगेट दैट ऑन 99.9 एफएम HD4 एंड 101.9 एफएम 1490 AM. बात कर रहे हैं हम दोस्ती की. चलिए स्कूल से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, कॉलोनी में जाते हैं, कम्युनिटी में, सब डिविजन में. आजकल तो वही लैंग्वेज समझ में आती है, बट बैक इन इंडिया उसको बोलते थे कॉलोनी, जिसको आज हम बोलते हैं सब डिविजन, काइंड ऑफ. सो बिफोर फोन्स एंड गेमिंग एप्स, बिफोर पीपल स्टार्टेड डूइंग वीडियो एडिटिंग, जो आजकल मेरे घर में काफ़ी पॉपुलर है, वन फ्रेंड वुड स्टैंड आउटसाइड एंड येल योर नेम, ये, एंड उसके बाद वो नाम सुनते ही क्रिकेटर्स ऑन द स्ट्रीट, बाइक्स, हाइड एंड सीक, समर वेकेशंस, वो तो खैर प्लान होती थी, लेकिन ये सारी चीज़ें तो रोड साइड में खेलने में उस टाइम पे काफ़ी मज़ा आता था. नॉट रोड साइड, आई शुड नॉट से दैट, करेक्शन, कॉलोनी में खेलने में मज़ा आता था, जहाँ पे छोटा सा पार्क हो घर के आगे या कुछ तो भी, राइट. सो दैट वॉज काइंड ऑफ फन. हाइड एंड सीक खेलते थे, किसी और के घर में घुस जाओ, इधर से उधर घुस जाओ. सो इट वॉज फन. ढूंढते रहो. और कब शाम हो जाती थी, यू नो, दिन से रात हो जाती थी. रात बोले तो नॉट लाइक 10 बजे, बट अंधेरा हो जाता था, और पेरेंट्स को नॉट सो पोलाइट लैंग्वेज में नाम लेके कॉलोनी में खड़े होके बुलाना पड़ता था कि घर आ जाओ, आपके हाथ जोड़ते हैं, अभी घर आ जाओ, काफ़ी टाइम हो गया. सो दोज वर लाइक फन टाइम्स, नॉस्टैल्जिक ऑलरेडी. ऐसा कभी आप लोगों ने किया हो तो इफ़ यू वॉन्ट टू शेयर एनी किस्सा, फील फ्री टू गिव मी अ कॉल. वी कैन टॉक, चिट चैट एंड टॉक अबाउट दोज, यू नो, लिटल जर्नीज दैट जो हम मिस करते हैं, सोचते हैं कि वो टाइम अच्छा था, यू नो. तो आपका कौन सा टाइम अच्छा था उन दिनों में, कॉल करना, बताना, बातें करेंगे. 919-999-8595. Until then, stay tuned to not go anywhere, and we have some amazing numbers as always.

0: Join IAFE's Garba Dandiya Night on Saturday, September 19th at 6 p.m. at Fuquay Varina High School with DJ Cash, BLR Food Truck and many more vendors. Don't miss your Garba lesson at 6:15 p.m. Included free with your entry. Visit iafenc.org for tickets.
1: At Triangle's Biryani in Morrisville, we are elevating the art of biryani with unmatched quality and flavor. From the finest hand-picked spices to the freshest vegetables and premium meats, every dish is a masterpiece. Don't miss our signature Kuku Pulav, a culinary delight available with chicken, goat, paneer, shrimp or fresh vegetables. It's fresh, flavorful and exclusive to the East Coast. Start your feast with sizzling appetizers, perfectly paired with your favorite hot drinks. Indulge in our weekday unlimited thali, a bountiful spread available in vegetarian and non-vegetarian options. Unwind with our signature cocktails like Pushpa the Fire, Classic Margarita, Old Fashioned, Negroni or Jungle Bird. Visit us today at 4121 Davis Drive, Morrisville or call 919-377-1029. Triangle's Biryani. Fresh, flavorful, unforgettable.
2: Movie dekhi thi, pav bhaji khai thi, panji gaye the.
3: Wrong! 2 अक्टूबर को गरबा नाइट है.
4: अरे भूली गया,
3: आ डेट तो याद रखवानी छोए. गरबा लवर्स, आर यू रेडी? ऑन अक्टूबर बीजी रिधम अने रास लेने आवे छे गरबा नाइट. चनिया चोड़ी अने केडियो रेडी राखो. एपेक्स मा थवानी छे फुल ऑन गरबानी धमाल. जॉइन अस फ्राइडे अक्टूबर 2nd एट 7 पीएम एट हवेली एपेक्स. Dance to the incredible beats of Amruta Manke and Nimesh Nagar with live music, delicious food, family, friends and Raat Bhar Garbani Moj. Early bird tickets only until September 7th.
2: Tickets on Sulekha or check the Rhythm and Ras Flyer on Radio Naira's Facebook, Instagram or RadioNaira.com. One beat, one circle, one community.
5: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल.
6: वेलकम बैक माय फ्रेंड्स. फ्रेंड्स के बारे में बात कर रही हूँ तो सब फ्रेंड्स से ही बात कर रही हूँ. वेलकम बैक टू रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 एंड 101.9 FM 1490 AM और आप सुन रहे हैं मुझे. हम बात कर रहे हैं पुराने दोस्तों की विद नई जिंदगी. सो चलो कॉलोनी से बाहर निकलते हैं, कॉलेज में चलते हैं. थोड़ा सा कैसी फीलिंग थी कॉलेज की? बंक करते थे क्लासेस? मैंने भी करी थी. आई रिमेम्बर, डोंट जज मी, बट I did bunk the class to watch DDLJ, first day, first show, yay. Sharing notes, obviously. Canteen mein baith kar chai, samosa khana aur class mein nahi jana, kind of correlated. First crush, oh my god. College mein hai to first crush to hona banta hai boss. Kuch to hoga, kahin to hoga. You know, those songs. Heartbreaks. अब crush है तो heartbreaks भी होगा ना. पहला पहला heartbreak, पहला पहला दिल टूटा, कैसा लगा? बहुत मज़ा आया होगा. उस time पे ऐसे लगता है जैसे पहाड़ गिर गया हो सर पे. लेकिन बाद में आज बैठ कर that's not how I laugh, but हंसी आती है. Hostel life. Of course, then we used to cover for each other for the classes or other things, you know. मैं उसके घर जा रही हूँ notes के लिए, मैं इसके घर जा रही हूँ. These are the people that we knew, like before we started our career, our marriage, you know, the friends after marriage, and of course the responsibilities that changed our lives. So I'm sure आपके दिमाग में भी कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई शक्ल, कोई ना कोई स्टैम्प जो लगी थी, यू नो दोज इम्प्रिंट्स. आई होप आई हैव ट्रिगर्ड समथिंग फॉर बेटर, फॉर गुड, फॉर प्लेजेंट एक्सपीरियंस एंड नॉट समथिंग दैट प्रॉब्ली शुड हैव बॉदर्ड यू. एनी हाउ आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू लिसनिंग टू सम सॉन्ग्स बिफोर वी डाइव मोर इन टू डिफरेंट एडिशनल स्टेजेस और फेजेस ऑफ फ्रेंडशिप. कैसे थे, कैसे हो रहे हैं, हाउ यू नो फ्रेंड्स आर इवॉल्विंग. लेट्स कम बैक एंड टॉक अबाउट दैट. हाउ अबाउट प्ले सम नंबर्स नाउ.

0: साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत।
1: वेलकम बैक, या ट्यून इन टू रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 एंड 101.9 एफएम 1490 AM, एंड यू विल नो कि दोस्ती कैसी होती है। एक दोस्ती वो भी थी, दोस्ती का एक असूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। और एक दोस्ती ऐसी थी, द फ्रेंड्स और द फ्रेंड डिपेंड्स ऑन प्लूरल और सिंगुलर, हु नोज टू मच अबाउट यू। सो एवरी ओल्ड ग्रुप हैड वन डेंजरस फ्रेंड दैट इज अ कीपर ऑफ ऑल योर सीक्रेट्स। दे रिमेंबर योर फर्स्ट क्रश, योर एम्बैरसिंग निकनेम, वेरी डेंजरस, टेरिबल हेयर कट एंड दैट लुक। और मे बी अगर आपके लक आपके साथ नहीं है तो वो एक पिक्चर भी होगी उसकी, यू नो दैट स्टूपिड हेयर कट की, एंड थिंग्स यू डेफिनेटली डोंट वांट योर चिल्ड्रन टू नो। सो आपके ग्रुप में वो कौन सा दोस्त है? प्रॉब्ली यू डोंट वांट टू टेल मी बिकॉज आई डोंट वांट टू नो, सो डोंट वरी अबाउट इट, विल पास दैट क्वेश्चन। बट फॉर नाउ लेट्स कंटिन्यू लिसनिंग द यू नो द ब्रिलियंट नंबर्स एंड जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट दैट फ्रेंड हु नोज टू मच अबाउट यू। एंड आर यू, माई ओनली क्वेश्चन फॉर यू इज दैट आर यू स्टिल इन टच विद दैट पर्सन? किन्नियां तारीफां चाहिदियां तेनू, दस दस, डू यू नो दैट पर्सन? बताना।

0: Mira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Daila mein kho jao Pakka Desi.
2: Welcome back, friends, and this is 6 o'clock now, and we are talking about Purane Dost Nayi Zindagi. Aur main hoon aapki dost aur host Jyoti, and you're listening to me on Radio Naira 99.9 FM HD4 and 101.9 FM 1490 AM. Just ignore the little bit noise around me, okay? Kuch kuch log kuch kuch kar rahe hain, aur actually yahan pe ho rahi hai कल के इवेंट की तैयारियां. सो यू माइट हियर सम बैकग्राउंड नॉइज, सो यू फील फ्री टू इग्नोर दैट, क्योंकि कल है भजन क्लबिंग विच इज ऑन द ओकेजन ऑफ कृष्णा जन्माष्टमी स्पेशल. एंड टुमारो इज सैटरडे सितंबर 5th, एंड इट इज एट हुकी एंटरटेनमेंट, 1140 पार्क साइड मेन. डू नॉट फॉरगेट टू कम देयर, एंड टिकट्स आर अवेलेबल ऑन इवेंट ब्राइट. आगे बढ़े, हम भी कृष्णा जैसे अपने ही दोस्तों से बात करें. जैसे कृष्णा बोलते हैं सब अपने ही दोस्त हैं, राइट? सो मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो सुन रहे हैं, आप सब मेरे दोस्त हैं. सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. वी टॉक्ड अ लिटिल बिट अबाउट दोस्ती कैसे शुरू होती है, जिसमें हम बोलते हैं तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, एंड लंच बॉक्स वाली दोस्ती, कॉलोनी की दोस्ती, कॉलेज की दोस्ती, एंड द फ्रेंड हु इज द मोस्ट डेंजरस, हु नोज अ लिटिल बिट मोर देन अदर्स अबाउट यू. I think that is most dangerous. अभी हम बात करेंगे when friends drift apart, फिर जिंदगी आ जाती है बीच में. जैसे मैं कहती हूँ, life happened. So life really happened. क्योंकि college हो गया है ख़त्म, jobs हो गई हैं शुरू, and cities have changed. People have moved countries, cities, and जब job आती है, you know, वो एक phrase आता है life में, जब parents पीछे पड़ जाते हैं, कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन हो जाएगी, सेटल हो जाएगा, हो जाएगी, जेंडर नो प्रॉब्लम, हाँ, एंड जॉब लग जाएगी, सेटल हो जाएगा, चलो जॉब लग गई है, शादी करा दो, सेटल हो जाएगा. वो सेटल तो खैर, आई डो नॉट नो, आई यू गाइस, डू यू गाइस फील दैट यू आर सेटल्ड? आई डोंट नो अबाउट दैट, बट वी आर ऑलवेज सेटलिंग, वेदर इट इज़ अ न्यू हाउस, न्यू सिटी, न्यू पर्सन दैट वी हैव टू डील विद. एंड वो पर्सन जब ओल्ड भी हो जाता है, तब भी हम सेटल ही हो रहे हैं इतने सालों से. 18 साल की मैरिड लाइफ है, या फिर 25 साल की, या 50 ईयर्स की, डजंट मैटर. सो समटाइम्स फ्रेंडशिप्स डोंट ब्रेक, इवन दो वी चेंज सिटीज एंड कंट्रीज, वी स्टिल कीप इन टच. डिपेंड्स ऑन स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, बट यू नो, डेली कॉल्स बिकम वीकली कॉल्स, एंड देन इट जस्ट गेट्स लिमिटेड टू बर्थडे मैसेजेस. So life simply becomes busy, which is where we are at right now. So anyway, that's the friendship. We have graduated from tu mera best friend hai, jaise ek bari Ranbir Kapoor bolta tha, Anushka Sharma se on Kapil Sharma show. She's my best friend. Anyway, aise hi mujhe ekdam se dimag mein aaya, to maine waisi tone lekar bolne ki koshish kari, but don't worry about it. Chaliye, ek dosti wo thi jisme Rani Mukherjee aur Kajol ne kaha tha, कोई मिल गया, तो देखते हैं इनको कौन मिल गया. कीप लिसनिंग, डू नॉट गो एनीवेयर, नंबर इज जस्ट कमिंग राइट अप.

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल
1: और मैं हूँ लोकल. एनीवे हम लोकल हैं लेकिन लोकल ट्रेन नहीं है, सो डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी. चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं दोस्ती की ऑन रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 एंड 101.9 एफएम 1490 AM. काफ़ी सारी डिफरेंट फेजेस में हम जा चुके हैं दोस्ती के, एंड ये वाला फेज़ वो है एडल्ट फ्रेंडशिप वाला, जो शादी के बाद या करियर के बाद ताज़ा ताज़ा मिलता है कहीं पे सोशली या वैसे मिल जाते हैं. अरे क्या बात, बड़ा मज़ा आया आपसे मिलके, चलो डिनर प्लान करते हैं. एब्सोल्यूटली नेक्स्ट वीकेंड बिजी हैं यार, और अ वीकेंड आफ्टर किड्स का कुछ चल रहा है, 3 महीने निकल गए. उसके बाद गाइज फिर कहीं मिलेंगे सोशल सेटिंग में, गाइज वी सीरियसली नीड टू मीट. सो हाउ इज दैट कंपेयर टू यू नो द फ्रेंडशिप्स दैट वॉज एट 18 वर्सेज यू नो कोऑर्डिनेटिंग 5 एडल्ट कपल्स और जस्ट एडल्ट्स इन जनरल, और उसी में टेंशन हो जाता है कि कभी किसी का टाइम नहीं बन रहा है, कभी किसी का मैच नहीं होता है. सो कोलैबोरेटिंग इट बिकम्स मोर लाइक अ स्ट्रगल. सो हाउ इज दैट? आई डोंट नो, आई जस्ट फील दैट वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे डज नॉट रियली वर्क इन दिस सिचुएशन, बिकॉज यू आर जस्ट नॉट अलोन, यू आर टाइड टू योर फैमिली लाइफ, टू योर

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: Welcome back. How was the Walla Walla song? I love it. Actually, more than that, somebody else at my house loves it. इसलिए भी मैंने थोड़ा सा चला दिया था. मैंने कहा चलो जी लो अपनी जिंदगी सिमरन. Actually, Raj. So, हम बात करें दोस्ती की. Actually, अभी मैंने जब I was just playing this song, I just realized it was actually, part of it was sung by Hardy Sandhu and diehard fan. Awesome guy. I mean, voice. चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्ती पे. हम बात कर रहे हैं एडल्ट्स की राइट नाउ, लेकिन बीच में एक ऐसा फेज भी आता है आजकल में, पिछले 10 सालों में आया होगा किसी के साथ, दैट स्कूल स्कूल रीयूनियन ग्रुप्स होते हैं जिसमें होते हैं 50 मेंबर्स. वैसे तो क्लास में कुछ इतने ही होते थे, लाइक 20-30 लोग, सेक्शन ए सेक्शन बी. उस टाइम पे इतना ऑकवर्ड नहीं लगता था, शायद लगता था लेकिन इतना याद नहीं है, लेकिन अपनी क्लास में इतना नहीं लगता था, बी सेक्शन के साथ लगता था. लेकिन जब कोई रीयूनियन ग्रुप बना देता है 50 लोगों के बीच में व्हाट्सएप में, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है. फिर गुड मॉर्निंग के फ्लावर्स आते हैं, पुरानी पिक्चर्स विच इज़ रियली गुड, बर्थडे विशेस, यू नो, फॉरवर्ड्स, मिस्टीरियस साइलेंट मेंबर हु विल रीड एवरीथिंग बट हैजंट सेड अ वर्ड समटाइम्स इन ईयर्स, एंड कोई क्लास की पिक्चर लगा देगा एंड देन यूर लाइक ओ माई गॉड. मैं ऐसे दिखता था या दिखती थी, इट इज़ फन. आई हैड अ लिटल बिट ऑफ नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस to share with you. I think a couple of years back we went to California, actually first time, and one of my school friends is there and we met, had dinner and everything. I learned from her that there are a couple of other friends who were in my class, they are also in the US. So there was a little reunion, so to speak, between all four of them, and when I saw the pictures, so I do not know what is the deal with this reunion. Like, wo apne aap se friends बन नहीं जाते बिकॉज यू आर ऑलरेडी फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल. सो छोटा सा रीयूनियन करते हैं एंड दे मेट, एंड आई वॉज नॉट श्योर इफ आई एम सपोज टू गेट मैड एट देम और लाइक देयर पिक्चर्स दैट दे डिड नॉट इवन टेल मी. आई कुड हैव गॉन मे बी जस्ट आस्क मी ये फॉर फॉर्मेलिटी. सो इट्स वेरी आई थिंक ट्रिकी सिचुएशन. इट्स वेरी देर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन you want to judge others or you want to appreciate or you want to just let it go or be silent or you feel that oh my god pucha bhi nahi types. So pata nahi kis tarah se react karna, to main to I just go silent. So I was like enjoy enjoy yourselves, I'm good wherever I am. Yeah, thoda sa bura laga tha, but anyhow, aap dost ho isliye aapke saath share kar rahi hu. Shh, jaise Kapil Sharma bolta hai, bilkul kisi ke saath share nahi karna, is show ke bahar bilkul ye nahi jana chahiye. I'm sure they are not listening to this, they don't even know what I do. So yeah, that is a little bit of pros and cons of, you know, reunion, ki kaun kiske saath kitna dosti rakhta hai and kya hai kya nahi hai, tumhari kya equation thi, kisi ke saath acche the, you know, that kind of stuff. So it's very, it becomes political after some time, does not really become dosti. So I think I'll pass on that reunion. I don't know about you guys. Aapke dimag mein kuch hai ya kuch recent reunion hua, aisa kuch experience hua? If you want to share, please call me 919-999-8595. I will keep your name anonymous, I promise, if you want me to. And we do not need to name people, but if you have anything to share, feel free to call me. Again, keep listening to Radio Naira 99.9 FM HD4 and 101.9 FM 1490 AM. And main hoon aapki dost aur host Jyoti. Do not go anywhere, kyunki aa rahi hai Lal Pari.

दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती गाने हिटरों के मुंह पे जाके बजे बूम क्लियर है विजन मेरी यारों नी नो जूम ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम

0: बेबी दे देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता. I'm a hustler, A1, lifestyle A1. ए मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम, एक ही बस एम, जो जलते हैं उन्हें और जलाओ. हिटरों की छातियों पे रख दीवे बाल, कैटोर मरावा के तिछोरे करनाल, के डैश अपनी दिल्ली से देरा दून, दोनों हाथों उठा के हवा में बेबी घूम.
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में.